0: तू राधा में कान्हा
1: ला ला ला ला।
0: क्या
1: बिजली और बादल
0: तुम दोनों हो पागल
1: है खूब ये जोड़ी
0: बस देर है थोड़ी
1: तुम जीवन साथी
2: हम सब बाराती
1: रंगों की डोली
0: ले आई होली
1: भर लो पिचकारी

0: मैं भूला रास्ता,
1: रस्ते पे आ जा।
0: मैं थाम लू भैया,
1: मैं छेड़ो सैया।
0: तुम दिल मत तोड़ो,
1: तुम आंचल छोड़ो।
0: तुम काहे रूठी,
1: मेरी चूड़ी टूटी,
0: दिल मेरा टूटा।
1: चल हट जा झूठा,
0: तो नाच में गाऊं,
1: तो बैठ में जाऊं।
0: मुश्किल है जाना,
1: तू है दीवाना।
0: मुझे अंग लगा ले,
1: बस रंग लगा ले।
0: नीला के पीला,
1: नीला ना पीला।
0: क्या लाल गुलाबी,
1: तू बोलो भाई।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

अब सारा परिवार दोनों हाथ जोड़ ध्यान मगन भगवती श्री महालक्ष्मी का महालक्ष्मी स्तोत्र श्रवण करें। नमोस्तुते महामाये श्री पीठे विश्व पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोल्हासुर भयंकरी कौमारी वैष्णवी ब्राह्मी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वदा सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वसिद्धि प्रदे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वसिद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ति सदा वंदे महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यंतरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगिनी योग संभूतारि महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्माक्षी वै महामाये महालक्ष्मी नमोस्तुते। परमेश्वरी महामाये महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते मंत्रमूर्ति सदा वंदे महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूले सूक्ष्मे महारौद्रे महाशांति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकमिदं पठते भक्ति तो नरः दुख दारिद्र शांतिश्च राज्य प्राप्तिश्च शाश्वती। कालमेकं पठे नित्यं महापातक नाशनं द्विकालं पठते नित्यं सर्वशत्रु विनाशनं त्रिकालं पठते नित्यं प्रसादो हि भवेत् खलु यः पठेत् प्रयतो नित्यं दारिद्र्यं नोपजायते। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और अब आइए आप अपने व्यापार कारोबार दुकान या दफ्तर की पूजा के लिए सामग्री एकत्रित करें। पूजन के लिए पहले आवश्यक है कलम दवात और पुस्तक यानी कैश बुक डे बुक लेजर इत्यादि और आपका गल्ला या सेफ। पूजन का थाल सामने रखते हुए थोड़ी सी मौली अपनी कलम के ऊपर बांधें और प्रार्थना करें। ओम मसी त्वम लेखनी युक्ता चित्रगुप्ता शस्तिता सदक्षराणाम पत्रे च लक्ष्यम कुरु सदा मम या माया प्रकृति शक्तिश्चंड मुंड विमर्दिनी सा पूज्या सर्वदेवैश्च यस्माकं वरदा भव। अब लेखनी यानी स्याही दान दवात के ऊपर मौली बांधें और तिलक करें और प्रार्थना करें। ओम शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमामाद्यम जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भयदाम जाड्यंधकारापहाम हस्ते सप्टिक मालिकाम विद्धदतीं पद्मासने संस्थितां वंदे ताम परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदाम शारदाम इति लेखनी नमः। अब आप अपना बही खाता कैश बुक डे बुक लेजर इसके पहले पन्ने पर स्वस्ति गणेश चिन्ह छापकर उसके ऊपर चावल फूल पत्तियां और मौली चढ़ाकर प्रार्थना करें। ओम या कुंदेन्दु तुषार हार धवला सा शुभ्र वस्त्र आवृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्तिर्भिर्दैवैहि सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। ओम वीणा पुस्तक धारिण्यैहि नमः। अब आप अपने सेफ गल्ले आदि में चावल छिड़ककर फूल पत्तियां चढ़ाकर और सेफ और गल्ले के अंदर गणेश बनाकर पूजन करें। आवाहयामि देवं त्वामिहायाहि कृपा कुरुं कोशं वर्धि नित्यं त्वं परिरक्षस्वरेश्वर धनाध्यक्षाय देवाय नर्यानोपवेशिनि नमस्ते राजराजाय कुबेराय महात्मने। और अंत में अपने दफ्तर और दुकान के भीतर चावल छिड़ककर फूल पत्तियां छिड़कते हुए प्रार्थना करें। नमस्ते सर्वदेवानां शक्ति तये सत्यमाश्रिता साक्षीभूता जगधात्री निर्मता विश्वयोनिना। सबके अंत में
दिवाली का त्योहार सजता है दीपावली से, यानी मकान के चारों ओर हम दीपक और मोमबत्तियां जलाकर अपने मकान की छवि को संवारते हैं। आइए पहला दीपक जलाने के लिए प्रार्थना करें, बाकी सब दीपक उस दीपक के साथ साथ जलाते जाएं। भो दीप त्वं ब्रह्मरूप अंधकारक निवारक इमामयापकृतां पूजां ग्रहणस्तेजं प्रवर्धय। ओम दीपेभ्यो नमः। ओम चक्षुर्दं सर्वलोकानां तिमिरस्य निवारणं आर्तिक्यं कल्पितं भक्त्या ग्रहाण परमेश्वरी। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी महारानी की जय।

मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी।

चोचरेत याम गतिम संवापनोति नताम ब्रह्मादयः सुरः सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीम् अनुकम्पयोऽहं यथेच्छसि तथा कुरु अज्ञानादि विसिम्रते भ्रान्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणार्चा मिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादा सुरेश्वरी श्री दुर्गार्पणमस्तु। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो देवी। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण है। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूं किंतु तुम्हारी शरण में आया हूं, इस समय दया का पात्र हूं, तुम जैसा चाहो करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, अज्ञान से भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो वो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, हे जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त होवे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।

0: No, sorry, mate.
1: No, we don't have that part.
2: Have you tried down the road?
3: We can get it in, but it won't be for a few days.
4: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
5: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
6: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
5: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
6: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 692378.
2: Official media partner, Sunrise Radio.
3: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कवर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1 टेलीफोन 723030 दास ब्रैडफोर्ड 723030
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056-014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant. Tradition, taste, and something new.

0: कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसीगियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

0: No, sorry, mate.
1: No, we don't have that part.
2: Have you tried down the road?
3: We can get it in, but it won't be for a few days.
4: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
5: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
6: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
5: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
6: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 Oak Lane, Bradford 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

0: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
2: Official media partner, Sunrise Radio.
3: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303 जीरो
5: A classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: चिड़िया कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

0: ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कन सलाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

0: नफ्सेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 10 ब्रेडफोर्ड 7230 30।

0: slow, 'cause all day long I got my radio. Got the greatest station, radio station in the world. Sunrise Radio.
1: No, sorry, mate.
2: No, we don't have that part.
3: Have you tried down the road?
4: We can get it in, but it won't be for a few days.
5: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
6: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
7: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
6: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
7: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम ब्रैडफोर्ड और इसके गिर्दोनवा में। इसके साथ साथ अगर आप हमें दुनिया के किसी और हिस्से में सुन रहे हैं तो उसके मुताबिक हम आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप इंडिया में सुन रहे हैं तो आपको हम कहेंगे आपका स्वागत करते हैं हम, स्वागत। इसके साथ साथ पाकिस्तान में सुन रहे हैं तो आपको खुश आमदीद कहेंगे, लेकिन इंग्लिस्तान में तो आप सुन ही रहे हैं। मतलब आप इंग्लिस्तान में अगर हैं और हमारा रेडियो स्टेशन सनराइज रेडियो नहीं सुन रहे हैं तो फिर और क्या सुन रहे हैं? घर वालों की बातें सुन रहे हैं या अपनी वाइफ की बातें सुन रहे हैं या वाइफ अपने हस्बैंड की बातें सुन रही हैं? बहरहाल आप सारी बातों को एक साइड पर रख दीजिए और सुनिए सनराइज रेडियो 103.2 एफएम, इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसके साथ साथ अगर आप हमें इंग्लैंड में सुन रहे हैं तो ऑफकोर्स हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, आपके शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं, आपका दिन रात कैसा, ये दिन रात एक किया हुआ है या दिन और रात अलग अलग से हैं? कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि उनका दिन और रात का पता ही नहीं चलता। वो या तो रात को काम कर रहे होते हैं तो दिन को घर वापस जा रहे होते हैं, और अगर दिन में काम कर रहे होते हैं तो रात को घर वापस जा रहे होते हैं। बहरहाल आप किस कैटेगरी से हैं, कि आपका ताल्लुक किस कैटेगरी से है, ये हमें ज़रूर बताएगा। स्टूडियो का नंबर हमेशा की तरह आपको याद होना चाहिए, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूँगा। आप हमें अपने टेलीविज़न पर भी सुन सकते हैं, आप हमें रेडियो प्लेयर पर सुन सकते हैं, ऑनलाइन ऑफकोर्स सुन सकते हैं sunriseradio.fm पर, और इसके साथ साथ आप अपने Amazon Kindle Fire पे भी सुन सकते हैं सनराइज रेडियो की नशरियात। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका हमारे साथ रहेगा आपसे लेकर तकरीबन 3 घंटे, नेक्स्ट आइंदा जो 3 घंटे हैं हमारा आपका साथ रहेगा। और तकरीबन मैंने इसलिए कहा है कि यू नो इंसान है, आगे पीछे हो सकते हैं हम, मतलब कुछ भी हो सकता है। बहरहाल ब्रैडफोर्ड और इसके गिर्दोनवा में साथ साथ जो हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले, हमारे सुनने वाले हमें मैनचेस्टर में सुन रहे हैं तो आप हमें DAB के ज़रिए सुन रहे हैं, और लीड्स में भी DAB के ज़रिए सुन रहे हैं। इसके साथ साथ ओल्डम, रॉसडेल, ईस्ट लंकशायर और मिल्टन किंग्स, वाओ, मिल्टन किंग्स में आप हमें सुन पा रहे हैं DAB डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि हम सिर्फ 24 घंटे नहीं, साल के 365 दिन नहीं, बल्कि हमारा और आपका साथ उम्र भर का है। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
3: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
2: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
3: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रैडफर्ड।
2: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

ओके ओके, सो बात यह है कि गाने तो हम सुनते रहते हैं, इसके साथ साथ हम मूवीज भी देखते रहते हैं, मूवीज के साथ साथ हम ड्रामे भी देखते रहते हैं। मतलब क्या क्या इंसान देखे, सारा दिन मोबाइल भी देखते रहते हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप रेडियो सुनते हैं तो रेडियो तो हम करते हैं बातें, बातें सुनने के लिए हम रेडियो ऑन करते हैं। बाज़ औक़ात हम बहुत बोर हो रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार रेडियो पे क्या चल रहा है, या तो खबरें या तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और आपको हर घंटे के बाद जो हमारा खबरनामा मिलता है उसमें आपको खबरें मिलती हैं, ट्रैफिक की अपडेट मिलती हैं, जिससे आप बाखबर रहते हैं कि दुनिया में और आपके इर्द गिर्द, आपके शहर में, आपके इलाके में क्या क्या हो रहा है। इससे सनराइज आपको अपडेट रखता है। इसके साथ साथ आपको गाने तो हम सुनाएंगे, लेकिन एक चीज़ हमारे शो में आज नहीं होने वाली है, वो ये है कि फरमाइशी गाने मैं को नहीं चलाने। अगर आप फरमाइश करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके लिए मुझे कॉल मत कीजिएगा, लेकिन आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हम हाज़िर हैं। आप कभी भी हमसे बात करें, और बात करने के लिए नंबर तो आपको पता ही है, और हमारे स्टूडियो का नंबर है 01274306666, यानी कि चार दफ़ा छः, मतलब 01274306666। आप हमें स्टूडियो में अभी कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि व्हाट आर यू अप टू।

मुझे याद है कि एक जमाना हुआ करता था कि जब बड़ा मायूब समझा जाता था कि कोई हमें फॉलो कर रहा है, कोई आपका ताकुब कर रहा है। आजकल हर दूसरा बंदा दूसरे बंदे को यही कहता है कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। आजकल हम खुद किसी को दावत दे रहे होते हैं कि भाई हमें फॉलो करें, मतलब मैं जहां जहां पे जाऊं, मैं जो कुछ भी करूं, मैं जो कुछ भी खाऊं, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। मतलब आजकल की जिंदगी इस तरह की हो चुकी है। बहरहाल आप भी हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, और इसके साथ साथ हमेशा की तरह आप हमें सुन पा रहे हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू भी, sunriseradio.fm।

वही जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। आप हमें कॉल करें 01274306666 पर। अच्छा, ये हमारा एक कह लीजिए कि ये देसियों का एक मामला है कि हम लोग ईमेल्स और टेक्स्ट वगैरह पर बहुत कम यकीन रखते हैं। हम अगर ईमेल कर भी दें किसी को गलती से, या फिर उनको हम मैसेज कर दें टेक्स्ट मैसेज, एक तो ये धड़का सा लगा रहता है कि टेक्स्ट मैसेज अगर आपने किया है तो वो सीन हो गया है या नहीं सीन हुआ। अगर सीन हो गया है तो वो बंदा रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा। और इसके साथ साथ ईमेल्स पे तो खैर ये तरीका नहीं है कि आप चेक कर सकें कि किसी ने आपकी ईमेल पढ़ ली है या नहीं पढ़ ली। बहरहाल होता यह है कि हम लोग ईमेल्स पे और टेक्स्ट पर, ये इन चीज़ों पे बहुत कम बिलीव करते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने किसी को ईमेल किया तो वो ईमेल कहीं पर गवास गई है, मतलब कहीं पे खो गई है, उसका कोई नामो निशान नहीं है कि अगले बंदे को पहुंच गई है या उसको रिस्पॉन्ड करने में कितना वक्त लगेगा। लिहाजा हम बिलीव करते हैं फ़ोन कॉल्स पर। हम कहते हैं कि यार फ़ोन करो यार, क्या है यार, मतलब इसमें से पहले चेक करो, मतलब डायरेक्ट बात जब तक बंदे से ना हो हमें तसल्ली नहीं होती। तो बहरहाल आप अपनी तसल्ली रखिए और हमें कॉल कीजिए 01274306666 पर। आपकी फरमाइशें बहरहाल हम नहीं ले रहे, लेकिन अगर आपकी कोई ये फरमाइश है कि आपने मेरे थ्रू किसी को आई लव यू कहना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और उनका नाम बता सकते हैं। मैं आपका जो पैगाम है, मोहब्बतों भरा पैगाम, वो पूरी ईमानदारी से थर्ड पार्टी तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।

राइट, आपकी कॉल्स का बेहद बेहद बेहद बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। लाइंस बहुत बिजी, अगर आपकी कॉल नहीं मिल पा रही तो उसके लिए मैं बहुत बहुत बहुत आपसे माजरा चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि आज जो आपकी कॉल्स आ रही हैं वो इतनी भरपूर आ रही हैं कि उसमें मुझे सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। यकीन कीजिए, ये जो एक शो करना है ना, ये जो एक रेडियो का शो करना है, ये ऐसा है कि जैसे आप जहाज चला रहे हैं। मतलब आपको हर चीज़ के ऊपर, आप इतने सारे बटन्स आपके सामने होते हैं, आपको हर बटन के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है कि अच्छा कोई बटन आगे पीछे ना हो जाए, किसी टाइमिंग गलत ना हो जाए। तो बहरहाल आपकी कॉल्स का शुक्रिया। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपकी कॉल्स सबकी जो हैं वो मैं रिसीव करूंगा और आपसे बात भी होगी। अगर आपको दोबारा डायल करना पड़ रहा है तो उसके लिए माजरत, और अगर आप दोबारा डायल करते करते नहीं थक रहे तो आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant. Tradition, taste, and something new.

कहते हैं कि आपकी जो नेटवर्थ होती है, किसी भी इंसान की जो नेटवर्थ होती है, वो अक्सर देखा जाता है ना कि किसी की क्या वर्थ है, वर्थ से मुराद जो नेटवर्थ है कि उसके पास पैसे कितने हैं, वो कितना अमीर है, उसका बैंक बैलेंस क्या है। सियाने कहते हैं कि किसी भी इंसान का जो बैंक बैलेंस होता है, जो नेटवर्थ जिसकी होती है, वो उसका नेटवर्क होता है। जिस तरह आपका नेटवर्क सनराइज रेडियो है, या आपका फैमिली नेटवर्क है, और जो हमारा नेटवर्क है वो आप हैं। हमारा तो बैंक बैलेंस यही है, हमारा जो ख़जाना है वो आपकी मोहब्बतें हैं, और जो आपका ख़जाना है वो सनराइज रेडियो है, जो आप डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू सुनते हैं, और जिसमें हमारी जो मोबाइल ऐप है वो शामिल है, और इस ऐप के थ्रू आप हमें डायरेक्ट सुन सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई कह लीजिए कि थर्ड मैन या थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, ये आपका और हमारा डायरेक्ट राबते का एक सोर्स है, जिसके थ्रू आप से हम कलाम होते हैं और हम आपसे हम कलाम होते हैं। हम कलाम होने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया से के थ्रू हमें रब्ता हमसे रब्ता कर सकते हैं, और sunriseradio.fm हमारी वेबसाइट है, और यहाँ पर आपको हमारे सोशल्स के तमाम लिंक्स मिल जाएंगे। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

बहुत से दिल जले हमें सुन रहे हैं और उन दिल जलों की ये फरमाइश है, ये तमन्ना है, ये चाहत है कि एक कोई दुखी किस्म की शायरी प्रोग्राम में शामिल की जाए। लेकिन एक बात मैं हमेशा से इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जब इंसान कोई दुखी होता है ना, उसको दुखी शायरी, दुखी गाने, दुखी बातें और दुख पहुँचाने वाले जो लोग हैं उनसे मज़ीद थोड़ा सा किनारा कशी कर लेनी चाहिए। दुखी शायरी या दुखी गाने आप इसी सूरत में सुनना चाहते हैं कि आप दुखी हैं या किसी की याद आपको सता रही है, तो मैं आपसे माजरा चाहता हूँ। अगर आप ऑलरेडी दुखी हैं तो मैं आपको कोई दुखी शायरी सुना के, दुखी गाने सुनाकर मज़ीद दुखी नहीं करना चाहता। तो बेहतर यह है कि अगर आप ने दुख फोलने ही हैं, अपने खरोलने ही हैं, या उन दुखों को आपने दोबारा से ज़िंदा करना है या उनको ताज़ा करना है, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए। मैं आपको उसका एक बेहतरीन किस्म का उपाय बताऊंगा कि आपको जो दुख लाहक हैं उनसे आप छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर तो आपको पता ही है, 01274306666। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

अच्छा जी, कहते हैं कि मोहब्बत की कोई जुबान नहीं होती, मोहब्बत की सिर्फ एक जुबान होती है, और वो जुबान होती है कि किसी भी जुबान में अगर आप मोहब्बत करना चाहते हैं तो उसको प्यार से बोला जाए तो वही मोहब्बत की जुबान होती है। मोहब्बत की जुबान वही होती है जो आपकी मादरी जुबान होती है। अगर आप अपनी मादरी जुबान से प्यार नहीं करते तो आप प्यार कैसे कर सकते हैं? तो आपकी मादरी जुबान चाहे पंजाबी है, उर्दू है, हिंदी है, उसके अलावा पहाड़ी है, पोटोहारी है, या पश्तो है, या किसी भी किस्म की आपकी ज़ुबान है, अगर आप वो ज़ुबान बोलने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप शायद मोहब्बत करने में भी किसी हद तक कंफर्टेबल ना हों। मोहब्बत तो हमेशा अपनी ही ज़ुबान में उसका मज़ा आता है, और चाहे वो मोहब्बत हो चाहे वो लड़ाई हो, जब इंसान लड़ाई भी करता है, गुस्से की हालत में भी होता है, तो वो अपनी मादरी ज़ुबान में ही लड़ाई करता है, तो उसको अजीब सी तस्कीन मिलती है कि शायद ये सही तरीका है लड़ाई करने का। मतलब हम लोग जो अपने अपने वतनों से यहाँ पर आकर आबाद हैं, अपनी अपनी ज़ुबानें बोलते हैं, जब हम लड़ाई करने की कह लीजिए स्टेज पर आते हैं, किसी से लड़ाई करना चाहते हैं या आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, तब तक हमें तसल्ली नहीं होती जब तक हम अपनी ज़ुबान में उससे आर्ग्यूमेंट ना कर लें, या उनसे हम लड़ाई ना कर लें, उनसे गिला ना कर लें। ये जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है, हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर जो बोलते हैं, वो अपनी ज़ुबान में लड़ाई करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। बहरहाल ज़ुबानें सारी अच्छी हैं, और जो भी ज़ुबान मोहब्बत और प्यार से बोली जाए वो सारी अच्छी ज़ुबानें हैं, सारी हमारी ज़ुबानें हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने किस ज़ुबान से हमसे बात करनी है, आप कोई भी ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि उसमें मोहब्बत ज़रूर शामिल कीजिएगा। स्टूडियो का नंबर है 01274।

की सबसे ज्यादा खूबसूरत बात ये होती है कि वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो वो गुजर ही जाता है। हालांकि वक्त की रफ्तार एक ही होती है, जब आप खुश होते हैं तो बहुत जल्दी गुजर जाता है, लेकिन अगर आप खुश नहीं होते हैं, अगर आप परेशान हैं, बेजार हैं या आपको किसी चीज़ में नुकसान पहुंच चुका है, तो वही वक्त आपके लिए जो एक सेकंड है वो एक घंटा बन जाता है, एक घंटा एक दिन बन जाता है। तो इसी तरह जब आप किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो हर लम्हा हर पल हर सेकंड आपके ऊपर एक पहाड़ जैसा बोझ लेकर आता है, आपको लगता है कि ये वक्त गुजर क्यों नहीं रहा। अभी हमारे शो को भी देखें, आपके साथ साथ चलते चलते हमारा वक्त कितना अच्छा और खुशगवार गुजर रहा है कि हमें वक्त का पता ही नहीं चला। वक्त भी गुजर जाएगा, आप भी जहां पर जा रहे हैं, जहां जाना चाहते हैं, आप भी गुजरते गुजरते वहां पहुंच जाएंगे और हम भी आपसे बात करते करते इस शो को अलविदा कहकर फिर अगले शो की इजाज़त लेकर आपसे हम अलविदा हो जाएंगे, आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी तो वक्त है, अभी आपने जाना कहीं नहीं है, क्योंकि आपने रहना है हमारे साथ साथ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हैं आपके साथ साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं बरतानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant. Tradition, taste, and something new.

अच्छा जी, आपकी कॉल्स का बेहद शुक्रिया। अभी हमारे एक दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं शायद जानबूझकर फ़ोन नहीं उठाता हूं। तो भाई आई विश के मेरे पास कोई ऐसा तरीका होता तो मैं आपको दिखा देता कि स्टूडियो के अंदर जो ये जो लाइंस फ्लैश कर रही हैं टम टम टम टिका टिका टिका टम टम टम, ये मैं आपको दिखा सकता लाइव। लेकिन वो भी दिखा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन देखिए, चूँकि कॉल्स की जो नंबर ऑफ़ कॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए और जिससे भी बात होती है वो भरपूर बात हो रही होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर बात हो, क्योंकि हम भी यहाँ हैं और आप भी यहाँ हैं। हम ना ही हमारा ये आखिरी शो है और ना ही आपकी आखिरी कॉल है। हम बातों का सिलसिला भी जारी रखेंगे और म्यूज़िक भी सुनेंगे और इसके साथ साथ मशहूरियाँ भी सुनेंगे। देखिए, ये जो मशहूरियाँ होती हैं ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। गाने तो सारे लोग एक दूसरे को डेडिकेट करते हैं, लेकिन मैं आप सबको, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबको आज मशहूरियाँ डेडिकेट करूँगा। जितने भी एड्स हैं ये मैं आपको डेडिकेट करूँगा। मैं कहूँगा ज़रा इनको गौर से सुने और सुने कि ये क्या क्या चाहते हैं और क्या क्या आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर आप की कॉल नहीं मिल रही तो मैं आपको एक मशवरा दे सकता हूँ। वो मशवरा मुफ्त है और मुफ्त मशवरा देने के लिए आपको थोड़ा सा पैसे तो आप मुझे नहीं देंगे और ना ही किसी और किस्म की इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक छोटा सा काम करेंगे कि मैं आपको थोड़ी देर बाद वो मशवरा बताऊंगा, और मशवरा बहुत फ्री में है, ये जहन में रखिएगा। उसका कोई नुस्खा नहीं है, उसका मतलब कोई उसकी कीमत नहीं है। वो मशवरा मैं आपको फ्री में देने वाला हूं, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा काम करना है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं 01274300666 पर। अगर आपकी इस नंबर पर कॉल नहीं मिल रही तो मेरे पास एक बहुत मुफीद मशवरा है। वो क्या है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 692378.
2: Official media partner, Sunrise Radio.
3: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 723030, दास ब्रेडफोर्ड 723030।
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?
6: Kad di chadi jawani tainu tu kar di

प्रोग्राम का एख्तिताम। ओके, यहाँ पर मुलाकात जो हमारी पिछले 3 घंटे से जारी थी वो अब उसका कह लीजिए कि एख्तिताम हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अंटिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखा कीजिए, अपने साथ साथ अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, और सबसे अहम, सबसे ज़रूरी, अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का, अपने माँ बाप का। क्योंकि माँ बाप दुनिया में इंसान की 2 आंखों की तरह होते हैं। अगर एक आंख देखना बंद कर दे तो दूसरी आंख उसका काम देती है, लेकिन अगर दोनों आंखें देखना बंद कर दें तो इंसान की जिंदगी एक अंधेरा बन जाती है। उसको दिखाई कुछ नहीं देता, उसको सुनाई भी कुछ नहीं देता। अपनी आंखों की हिफाजत किया कीजिए, अपने इर्द गिर्द, अपने दोस्तों, रफका और अपने अजीजो अकारब का ख्याल रखा कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।

कलियां ता गौंदे मैं बहुत वेखे, बादशाह इको सी लखां च माणक कलियां दा। मां हुंदी है मां, छेती कर सरवण पुत्रा, गौंदा कोना कोना अज भी शहरां गलियां दा। माण माणक दा बनाया जिहड़ा सच्चे रब ने, ना ही योधियां दा ना ही वलियां दा। लोकी रहबरां दी रावां विच फुल सुट दे, मान माणक नूं मिलिया हत्थां दियां तलियां दा। सस्सी सोहणी महिवाल ते हीर रांझा, किस्सा सच दा गाया रूहां भलियां दा। मैनू माणक दी गोदी च बैठण दा जिहड़ा माण मिलिया, मैं दान कीता होना जरूर सोने दियां फलियां दा। किसे कलियां ता गौंदे बहुत वेखे, बादशाह इको सी लखां च माणक कलियां दा। बादशाह इको सी लखां च माणक कलियां दा। उस्ताद श्री कुलदीप माणक जी नूं समर्पित चंद शब्द।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday, the 23rd of October, at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs, and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking, and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences, and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
2: Official media partner, Sunrise Radio.
3: कुल्लू नफसेन ज़ायकतुल मौत।
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रैडफोर्ड 7230 30 0
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30, दास ब्रेडफोर्ड 7230 30.
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

0: नफसेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: This October, Bollywood meets Bhangra in Manchester. In-house Productions presents Bollywood meets Bhangra 4, featuring Dutch sensation Jenna Jia performing live. Enjoy Bollywood, Bhangra, hip-hop, Afro and R&B, plus DJs, dancers and dhol players. Friday the 23rd of October, from 9 p.m. till late, at Area, 50 Sackville Street, Manchester. Entry is free. Photo ID required. For information, call 0775-3363-926.

0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिर्रबिलआलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फअऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين صدق الله العظيم محترم ومكرم سامعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته आपसे मुखातब आपका मेज़बान मौलाना फजलदाद और हमारा ये प्रोग्राम सनराइज़ रेडियो के ऊपर सनराइज़ 103.2 एफएम 100.6 एफएम अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर और पूरी दुनिया में आप इसको सुन सकते हैं www.sunrise.radio के ऊपर और सनराइज़ रेडियो की जो ऐप है उसके ज़रिए भी आप सुन सकते हैं। हमारा ये प्रोग्राम हर जुमा की शाम को 8 बजे से 9 बजे तक यूके टाइम लाइव हुआ करता है और यूके इसलिए अर्ज़ करता हूँ कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लोग इसको सुनते हैं, अपना टाइम उसके मुताबिक एडजस्ट कर लें, इसमें आप भी हिस्सा ले सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर 01274 306 66 01274 306 66 और जो यूके के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो यूके का जो एक्सटेंशन नंबर है 0044 उसको ज़रूर उसके साथ लगाइएगा। आई एम योर होस्ट मौलाना फजलदाद एंड दिस इज आवर वीकली सेशन एवरी फ्राइडे इवनिंग्स बिटवीन 8 o'clock and 9 o'clock UK time on Sunrise Radio. Sunrise 103.2 FM, 100.6 FM across the whole of West Yorkshire. And you can also listen to it on www.sunrise.radio or you can alternatively use the Sunrise Radio app as well. And you're most welcome to take part in this session. The number for our studio 01274 306 66 01274 306 66, and if you're calling from out of the UK then please remember to add on the extension 0044. Today's date Friday 9th of October. आज की तारीख फ्राइडे 9th of October और हर जुमा की शाम को हम यहाँ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। आप फ़ोन इन कर सकते हैं, चाहे कोई इस्लामी मसला हो या हालात हाजरा के ऊपर कोई तबसरा करना हो या कोई अच्छी बात आपके जहन के अंदर आती हो और आप उसको हमारे बाकी सामेईन के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ये मोस्ट वेलकम। आप कॉल कर सकते हैं, हम भी आपकी बात सुनेंगे और बाकी जो हमारे सामेईन हैं वो भी आपकी बात सुनेंगे। यू मोस्ट वेलकम टू कॉल इन। इट कुड बी रिगार्डिंग एन इस्लामिक मसला, इट कुड बी रिगार्डिंग आवर लोकल इश्यूज, नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, इनफैक्ट एनीथिंग दैट यू मे फील इट टू बी बेनिफिशियल टू आवर लिसनर्स or to pass the word on, you're most welcome to come on air and share it with us. We'll listen to what you've got to say and so will the rest of our listeners, inshallah. Quran Kareem ki ayat maine tilawat ki hai aur uske andar Allah Rabbul Izzat हमें बहुत ही अहम चीज़ की तरफ हमारी तवज्जो दिलाते हैं। चुनाचे फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीन आमनुस्तईनु बिस्सबरी वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। اے ایمان والو، صلاح اور صبر دونوں سواد کے ساتھ ہوتا ہے، صلاح سواد کے ساتھ، صبر اس کو بھی سواد کے ساتھ، صلاح اور صبر کے ساتھ، استعینوا بالصبر والصلاة، اس سے تم مدد حاصل کیا کرو اپنے مشکل اوقات کے اندر، کیونکہ مشکل اوقات ہر انسان پر کسی نہ کسی موقع کے اوپر ضرور آتا ہے. ڈیفیکلٹ ٹائمز دے کم آن آلموسٹ ایوری باڈی سم ٹائم اور ادر، ریگارڈلس آف ویدر یو آر اے پاپر اور ویدر یو آر اے ویلتھی رچ انڈیویژل. If you are from the elite or you are from the downtrodden or you are anywhere in between, in other words, every single person, in fact, not just people, human beings, but also animals as well, birds, everything in this dunya Allah has created, it goes through tough times. Of course, the tough times for people are different, for animals there are different. Mushkil halat insano ke upar jo aate hain wo alag andaaz mein, janwaron ke upar jo aate hain wo alag andaaz mein, پرندوں درندوں کے اوپر جو آتے ہیں وہ الگ انداز میں، لیکن ان کے اوپر بھی مشکل حالات ہوتے ہیں. صرف اللہ ہی کی ذات ہے ایک کہ جس کے اوپر کوئی حالات نہیں آتے، وہ ایک ہی حالت میں ہے شروع سے آخر تک. اٹ از اونلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو ڈزنٹ ہیو اینی ایکسٹرنل انفلوئنسز، انفلوئنس ان ہم. اللہ از forever in the same state، ایک ہی حال پر ہے، اس کے اوپر مختلف حالات نہیں آتے. جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہوں، اس کے اوپر بھی حالات آتے ہیں، سخت حالات. جب میں حالات کہتا ہوں تو مطلب یہ ہوتا ہے تکلیف، پریشانی، مصیبت. چاہے وہ وقت کا پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ وقت کے کوئی لیڈر ہوں، بادشاہ ہوں، چاہے وہ شہزادے ہوں، ملینئر ہوں، بلینئر ہوں، لیکن حالات ان سب کے اوپر مختلف اوقات میں آتے ہیں، کسی کے اوپر زیادہ سخت، کسی کے اوپر نرم. لیکن پریشانی ضرور آتی ہے. تو جہاں اللہ رب العزت نے مؤمنین سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ صلاح اور صبر کے ذریعے تم مدد طلب کیا کرو اللہ سے مشکل اوقات میں. اور جب مشکل حالات آئیں اس وقت ڈٹے رہنا، یہ مؤمن کی ایک نشانی ہوتی ہے. گھبرانے کا نہیں، حالات آتے ہیں، ٹل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی کے اوپر زیادہ دیر کے لیے آتے ہیں، کسی کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، کسی کے اوپر بہت عرصے تک وہ حالات اور سختیاں پریشانیاں آتی ہیں، اور کسی کے اوپر مختصر چند لمحوں کے لیے آ کر پھر چلی جاتی ہیں، اور پھر اس کا صرف لینتھ، اس کا جو لمبائی ہے اسی کا دھیان نہیں، بلکہ کس قسم کی مصیبت ہے، دا ڈیپتھ آف اٹ، اس کی جو گہرائی مصیبت کی، کہ بعض انسان کے اوپر تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں جو ہوتی ہیں وہ بہت ہی سخت اور بڑی ہی زندگی کو تبدیل کرنے والی ہوتی ہیں. اور بعض ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے انسان پریشان ہوتا ہے، اللہ رب العزت پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، اور پھر واپس اس کی پریشانی ختم ہونے کے بعد خوشی والے حالات اس کے اوپر آ جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد कि बाहर सूरत चाहे परेशानी थोड़ी हो या परेशानी ज्यादा हो, लंबी हो या मुख्तसर हो, बाहर सूरत फरमाया अगर उस परेशानी को आप हल्का करना चाहते हैं तो फरमाया चंद ऐसी चीजें हैं जो इंसान अपने जहन के अंदर रखे। सबसे पहले उलमा फरमाते हैं जब भी इंसान के ऊपर कोई हालात आए, कोई परेशानी आए, तो फरमाया उस वक्त अल्लाह का शुक्र करे कि इससे सख्त परेशानी नहीं आई। सबसे पहले कि या अल्लाह इससे भी सख्त हो सकता था। वो हमारे जान पहचान वाले हैं, उनके बेटे जो हैं एक वो अपनी यूनिवर्सिटी ख़त्म करके आ रहे थे, रमज़ान मुबारक का मौका था, 27वीं रमज़ान थी, तो बड़े भाई ने कहा कि आप उधर से आएंगे यूनिवर्सिटी से दूसरे शहर से, तो मैं इस तरह करता हूँ आपको आकर पिकअप कर लेता हूँ, यंग हैं, रात का वक़्त है, इफ्तारी कर ली है, चंद दिन बाकी हैं, ईद के लिए तैयारी करनी है। तो वो इसलिए आ रहा था ताकि ईद अपने वालिदैन भाइयों बहनों के फैमिली के साथ गुजार सके। आखिरी चंद दिन थे रमज़ान के, रात का वक़्त था, मोटरवे के ऊपर गाड़ी जा रही थी, अचानक सामने वाले शख्स ने इमरजेंसी ब्रेक मारी। अब उन दिनों के अंदर सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी नहीं था। इन दोज़ डेज हेयर इन द यूके इट वॉज़न्ट कंपल्सरी टू वेयर द सीट बेल्ट। दोज़ टू यंगस्टर्स, टू ब्रदर्स, वन हैड been at home wanting to bring his brother back for Eid a few days before Eid during Ramadan, and the person in front pressed his or her brake in an emergency on the motorway. In those days it wasn't compulsory to wear the seat belts. Dono bhai jo hain, gaadi jab uski accident hui तो स्क्रीन से दोनों निकलकर सामने जो टारमाक होता है उसके ऊपर उनके चेहरे जो है वो घसीटे गए, वहीं फौरन दोनों जो हैं फौत हो गए। अब उनकी जो वालदा थी, जाहिरी बात है उसको इतनी परेशानी हुई कि आपे से बाहर निकलकर अब उसका जो दिमाग है वो घूम गया, फिर गया और बहकी बहकी बातें शुरू कर दी। बाज़ औक़ात इंसान को जब अचानक शॉक लगता है कि दो जवान बेटे जिनके साथ बड़ा ही प्यार था आपको और दोनों अभी यहाँ फौत हो चुके हैं अचानक, और अभी इंतज़ार कर रहे थे कि अभी थोड़ी देर तक, एक आध घंटे तक आधे घंटे तक पहुँच जाएंगे और फिर एक दो दिन के बाद हम इकट्ठे बैठकर ईद की खुशियां मनाएंगे, उस माँ के दिल के ऊपर क्या गुजरता होगा। अचानक जब उसने ये खबर सुनी तो बिकॉज ऑफ शॉक शी वेंट इनटू दिस स्टेट वेयर शी डिडंट नो वेयर शी वाज, व्हाट शी वाज सेइंग, व्हाट शी वाज डूइंग, वॉकिंग अराउंड इन लाइक अ ट्रांस। अच्छा, अब उधर जो वाले साहब हैं वो अकेले बेचारे, इधर दो बच्चे फौत हो गए, बीवी अचानक उसका दिमाग ख़राब हो गया और एक छोटा बच्चा रह गया है घर के अंदर। अब उस वालिद के जहन के ऊपर कितनी सख्त परेशानी आई हुई होगी। میرے والد صاحب مجھے یاد ہے کہ فرما رہے تھے کہ جس وقت میں نے ان دونوں ینگسٹروں کو غسل دیا, کیونکہ والد صاحب غسل دیا کرتے تھے, میں نے ان دونوں کا چہرہ پہچان نہیں سکا, کیونکہ جب وہ اسکرین سے نکلے اور ان کا منہ جب روڈ کے اوپر سرفیس کے اوپر لگا اور گھسیٹتا گیا, پہچاننا مشکل تھا. میں نے بہت غسل دیے پوری زندگی کے اندر میت کو, لیکن اس قسم کے حالات میں نے کبھی زندگی کے اندر دیکھے نہیں. My father was very emotional, I can remember, because we knew these were our like family friends. And he said, when I gave them their ghusl before the janaza, it was difficult to recognize their face, the youngsters. I was young. تو کہنے کا مقصد کہ اس والد کے اوپر اس وقت کیا پریشانی ہوئی ہوگی, at that time what must have been going through the father's mind that here he's lost his two sons, his wife, she due to severe shock she's lost her senses and she can't comprehend what's happening at the moment. ادھر ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس کا بھی دیکھ بھال کرنا ہے, اور ادھر لوگ آ رہے ہیں, کبھی ہسپتال میں اس کو جانا ہے, کبھی کدھر جانا ہے, کیونکہ موٹر وے کے ایکسیڈنٹ تھا, وہ ہسپتال کے اندر لے گئے اور وہاں رکھا, اور پھر جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوتی, کیونکہ دو آدمی فوت ہو گئے, بیکاز ٹو پیپل ہیو لاسٹ دیئر لائفز, دیئر باڈیز آف دوز ٹو انڈیویجولز آر ناٹ بینگ ریلیزڈ انٹل این انویسٹیگیشن ٹیکس پلیس آف واٹ ہیپنڈ اینڈ وائی اٹ ہیپنڈ ایکسیٹرا, واز اٹ ملیشیس, واز اٹ ایکسیڈنٹ, واز اٹ آن پرپز, ہاؤ واز اٹ ایکسیٹرا. I don't want to go into that side of things. لیکن کہنے کا مقصد کہ انسان کے اوپر جب پریشانی آئے تو یہ سوچے کہ مجھ سے زیادہ پریشان بہت سارے لوگ ہیں, یا اللہ یہ جو پریشانی آئی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس سے زیادہ سخت نہیں ہے, ورنہ مجھ سے زیادہ پریشان ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں. There are thousands, in fact hundreds of thousands of people who are in much more severe situations than I am. That's the first instinct of a human being should be. وہ پچھلے ہفتے ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ آپ سے بات کرنی ہے, مجھ سے بات کی مسجد کے اندر سائڈ بیٹھ کر تنے تنہا, اور زار و قطار رونے لگ گیا. میں نے کہا ہوا کیا؟ تھوڑی دیر میں نے انتظار کیا تاکہ وہ کام ڈاؤن ہوئے. اس نے کہا کہ جوان بیٹی تھی 18-19 سال کی اور گھر سے چلی گئی. ایک دن کانٹیکٹ نہیں ہوا, دوسرے دن کانٹیکٹ نہیں ہوا, پولیس کے ہم نے جب ریفر کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اطلاع ہے شی از اوور 18, 18 سال سے زیادہ ہے, اور اس ملک کا قانون یہ ہے کہ وہ ایڈلٹ ہیں, دے آر این ایڈلٹ, اور شی از ویل, وہ ٹھیک ٹھاک ہیں, گھر نہیں آنا چاہتی, اب لوگوں کے ساتھ وہ کوئی تعلقات نہیں رکھنا چاہتی, اس کو دوسرا کوئی لڑکا مل گیا ہے آن دا انٹرنیٹ اور اس کے ساتھ وہ رہنا چاہتی ہے. انہوں نے ان کو کہا کہ کم از کم اس کا کانٹیکٹ تو دیو, ہماری بیٹی ہے 19 سال 20 سال جتنے بھی ہوئے ہم نے اس کو بڑا کیا ہے پیار محبت سے, بڑی کوئی سختی نہیں کی, کبھی کچھ نہیں کیا, بڑے ہی پیار کیا, ہمارے دل کا ٹکڑا ہے, اس وقت ہمارے اوپر کیا گزر رہا ہے ہمیں اتنا تو پتہ ہو کدھر ہے کدھر نہیں ہے, وہ کھانا کھا رہی ہے, اس رات کو سو رہی ہے. تو ان کو جواب ملا کہ کانفیڈینشیلٹی کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ کوئی شیئر کر نہیں سکتے, نہ اس کا ایڈریس, نہ اس کا فون نمبر, نہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں, صرف اتنا بتلا سکتے ہیں کہ شی از ناٹ لاسٹ, شی از ناٹ کڈنیپڈ, شی از ان اے گڈ اسٹیٹ, ٹھیک ٹھاک ہے. اس نے کہا اب اتنے دن ہو گئے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا اس سے, ہماری اوپر کیا گزرتی ہوگی, माँ बाप होने के हैसियत से as a parent I as a father and mother at home she hasn't eaten properly since she's gone first one or two days we didn't even know anything about her pehle ek do din to hame uske bare mein pata hi nahi tha aur ab jab pata bhi chala hai to itna pata hai ki wo zinda hai apni marzi se yahan se chali gayi hai अब उनके ऊपर क्या परेशानी गुजरती होगी कि उनको खाना भी अच्छा नहीं लगता कोई पीना अच्छा नहीं लगता उनके ऊपर तो इसलिए जब आपके ऊपर कोई तकलीफ हो परेशानी हो तो ये सोचो कि हजारों ऐसे हैं कि जो मुझसे ज़्यादा सख्त परेशानी के अंदर है ऐसे करते हैं काफ़ी देर से कुछ कॉल्स आई हुई हैं तो कॉल्स ले लेते हैं फिर आगे बात चलाते हैं इंशाल्लाह अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आप खैरियत से हैं
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र आपकी दुआएं
0: जी आपका नाम क्या है जी
1: अली
0: अराइन साहब जी अराइन साहब खैर खैरियत है फोन किया आपने जी आप इरशाद फरमाएं
1: मैंने फोन इसलिए किया जैसे हालात पाकिस्तान के हुए हैं वो तो सबको हम सबको पता है हमारी आर्मी कर रही है कश्मीर और पूरा पाकिस्तान सब शामिल है ना
0: जी
1: तो वो हर बात में जब भी डीजीआई एसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो कहता है इस्लामी फौज ये कहाँ की इस्लामी फौज है मेरा ये सवाल है ये इस्लामी फौज है अगर इस्लामी फौज ऐसे करती है तो फिर दुश्मन फौज या गैर इस्लामी फौज क्या करे तो आप तो थोड़ी सी इस पर रोशनी डाल सकते हैं क्योंकि आप साहिबे इल्म हैं तो हो सकता है आपकी बात उनको दिल को लग जाए तो कुछ अपनी आवाम पर रहम कर
0: अली अराइन साहब बात तो मैं भी कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं लेकिन उनके दिल पर लग जाए तो मेरे से ज़्यादा इलम वाले ज़्यादा तकवे वाले उनके ज़्यादा करीब ज़्यादा मालदार लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस वाले जब वो बात करते हैं तो उनको बात करने नहीं देते जो बात करते भी हैं तो उनको अंदर कर देते हैं आपने तो देखा हालात वहाँ किस तरह हैं जो बात कर रहा था उसको तो अंदर कर दिया और उसको करने नहीं दिया तो उस इतने फेमस आदमी मेरे ख्याल में दुनिया के अंदर बहुत कम हैं आप समझ गए मेरी बात ना उस इतना तो फेमस कोई है नहीं अल्लाह ने उसको इज्जत भी दी है यानी मर्तबा दिया है इन्फ्लुएंस है ताल्लुकात हैं सच्चाई है नॉलेज है सब कुछ है तो अगर कोई बात सुनने के लिए सुनने वाली होती तो बहुत सारे सुनने वाले हैं लेकिन वाकई पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत सख्त हैं और कश्मीर के भी जो
1: को सलामी फौज कहना चाहिए जो हालात इन्होंने किए हुए
0: बस इस्लामी फौज तो है ही है अलबत्ता ये है कि यानी मुसलमान ये इस्लाम तो बहुत अच्छी चीज़ है चलो आपने आपने सवाल कर दिया जी या और आप ऐसे करें आप उसके ऊपर बातचीत करें तो फिर मैं अर्ज करता हूँ
1: नहीं मेरा यही है मौका अगर ये सलामी फौज है लेकिन ये नहीं कि आप सलाम का तड़का लगाते रहें लेकिन काम जो जोन सारा वाले करते रहे तो आप सलाम का नाम यूज कर रहे हैं ना सलाम वाले काम भी करें ना सवाल तो ये है असल तो मेरा लेकिन अगर सब साहिबे इल्म जो भी जितने भी हैं छोटा है कोई बड़ा अगर सब इस पे मुतफिक अगर बात नहीं करेंगे मेंबर से बात नहीं कोई मेंबर रसूल से बात नहीं कोई करेगा कल क़यामत वाले दिन उनसे नहीं पूछा जाएगा
0: सही।
1: आपने अपना हक अदा क्यों नहीं किया
0: सही।
1: वो तो गलत कर रहे हैं लेकिन जो आलमे दीन है जिनका फर्ज है
0: सही।
1: वो अगर नहीं करेंगे तो फिर क़यामत वाले दिन हम सबको से पूछा नहीं जाएगा अल्लाह ताला पूछेगा नहीं
0: करना चाहिए हर आदमी को उस जो सच बात है हक बात है हर हालात में करनी चाहिए जी बिल्कुल
1: ये देखो इस्लाम में यही है ना अगर आप हाथ से रोक सकते हैं तो हाथ से रोकें नहीं तो जुबान से कह सकते हैं जुबान से कहें नहीं तो दिल से सबसे जो निचला दर्जे वो तो हम कर सकते हैं ना लेकिन हम लोग सब मुनाफ़त कर रहे हैं मैं तो खुल के बात करूंगा हम सब 90% मुनाफ़त कर रहे हैं तो लेकिन इसका सजा तो हम सबको मिल रही है ना एक को तो नहीं मिल रही लेकिन कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो क्यामत वाले दिन हम अल्लाह से क्या उम्मीद रख सकते हैं।
0: जी तो अरहान साहब, तो अरहान साहब आपसे ऐसा वैसे सवाल के तौर पर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जहां कोई गलत काम हो रहा हो, जहां कहीं भी हो रहा हो, तो हदीस में आया है कि उसको अपने हाथ से अगर रोक सकते हैं तो रोको, अगर नहीं तो फिर अपने जबान से, नहीं तो अपने दिल से, और ये सबसे कमज़ोर। तो आप जो फरमा रहे हैं कि वाकई कि हमें करना चाहिए, लेकिन आप ऐसे करें कुछ मिसालें दे दें कि क्या क्या कर सकते हैं हम।
1: नहीं हम देखो चलो जोर हम हाथ से तो नहीं उनसे रोक सकते,
0: सही,
1: क्योंकि उनके पास असला भी है, सब कुछ है, वो ताकत में हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन हम चलो ठीक है, जो तो पाकिस्तान में बैठे हैं वो तो मजबूर हैं, उनके माओ बहनों को ये उठा लेते हैं, इतना काफर लोग भी नहीं करते, यूजर सारा भी नहीं करते जितने ये इस्लामी फौज के तड़का लगा के कहते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो हम बाहर बैठे हैं तकरीबन 1 करोड़ से तो ज्यादा ही होंगे ना पाकिस्तानी जो बाहर बैठे, हम अगर सब मुतफिक हो जाए तो कुछ ना कुछ तो हम कर सकते हैं ना, इनका इधर आने जाने का तो इनका डर तो होगा ना, जिधर ये आगे छुपते हैं इधर तो आने के लिए ये सोचेंगे ना, इनकी पॉलिसियां चेंज होंगी अगर हम सब मुतफिक हो गए अपना हक अदा करें।
0: हाँ, मुत्तफिक ये एक चीज़ कर सकते हैं इत्तेफाक, लेकिन इसके अलावा और क्या, क्योंकि अभी आप ऑन एयर हैं, हज़ारों आदमी आपको सुन रहे हैं, तो हो सकते हैं आप उनको कोई अच्छा आइडिया दे दो कि, क्योंकि हर आदमी कहता है भाई हमें कुछ करना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए, तो आप हमें ज़रा बतला दो कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, यानी कानून के दायरे के अंदर रहकर। ऑफकोर्स
1: सबसे पहले तो मैं तो ये कहूँगा हमें सबको, चाहे हम सबके रिश्तेदार उधर बैठे हैं सब बैठे हैं, हमें रैमिंग नहीं बेचने चाहिए, इनकी जो पाकिस्तान में जिनको हम बेचते हैं उनको ये तो कह सकते फौजी प्रोडक्ट पे हम बाइकॉट करें, जैसे हम दूसरे सारे चीज़ों पर बाइकॉट करते हैं, इन पर तो कर सकते हैं ना, रेमिडेंट नहीं बेचेंगे ये क्या कितने देर तक मुल्क को चला सकेंगे।
0: क्या ना भेजें दोबारा, आवाज़ पूरी नहीं आई, क्या ना
1: पैसे वगैरह इधर से नहीं भेजेंगे,
0: ठीक,
1: सबको ये मुतहद हो जाए, अगर 1 साल या 6 महीने ना भेजेंगे तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनको फर्क पड़ेगा।
0: लेकिन अरहान साहब सॉरी आपको दरमियान में, ये बात किसी एक और आदमी ने भी कही थी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, आप ज़रा मुझे समझाओ कि जब आप पैसे अपने रिश्तेदारों को नहीं भेजेंगे, क्योंकि हम अक्सर जो भेजते हैं तो वो रिश्तेदारों को ही भेजते हैं ना, या ज़कात भेजते हैं तो गरीबों को भेजते हैं, तो अगर आपने भेजा नहीं तो आपके रिश्तेदारों को तकलीफ़ होगी, या वो जो गरीब गुरबा है उनको तकलीफ़ होगी, जो अपने ऑफिसों के अंदर और हेडक्वार्टर्स के अंदर या हेच क्यू के अंदर बैठे हैं उनको तो तकलीफ नहीं होगी, कहोगी जरा एक्सप्लेन करो ना मुझे समझ आ जाए।
1: अगर
0: क्योंकि
1: अगर मैं जिसको पैसे भेजता हूँ मैं उसको कहता हूँ अगर तुम उधर रह के इनके खिलाफ बात नहीं कर सकते, इनकी प्रोटेक्ट भी हर चीज इनकी यूज कर रहे हो, तो बेहतर यह है मैं उनको ना भेजूँ, वो भूखा मर रहा है तो फिर उनसे जाके मांगे ना, हम पे कोई फर्क तो नहीं, हम उनको पैसे भी भेजें वो उल्टा वो उनकी चीजें भी खरीदे और उनको प्रॉफिट भी होती रहे, बाई कार्ड भी नहीं कर रहे, ठीक है हम चलो जो पैसे भेजते हैं उनको ये तो कहें भी हमारी भी बात मानो, हम आपको ये सहूलत देते हैं तो आप भी ये सहूलत लें, अगर एक उनकी चीज बनी हुई नहीं लेंगे तो दूसरी कंपनी की ले लें, उसको फैसला तो होगा ना, इनको तो नुकसान होगा ना, लेकिन हम सब कुछ करते ही नहीं तो फिर हम एक दूसरे पे छोड़ रहे हैं यार क्या करें, यार छोड़ो कुछ नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा, अल्लाह ताला भी उनकी मदद करता है जो खुद कुछ करना चाहे, तो अल्लाह ताला ने तो नहीं नीचे अल्लाह ने तो नहीं इनके आन पकड़ने, हम अशरफुल मखलूकात हम कहते हैं ना, इंसान को सवाल तो दिया, अगर इंसान और हैवान में फर्क नहीं है तो वो भी खाना खा के सोता है सब कुछ करता है, तो हम भी खाना खा के सो रहे हैं तो फिर इंसान और हैवान में क्या फर्क है। देखा ये हर बंदा कुछ ना कुछ कर सकता है, अपना हिस्सा तो डालना चाहिए ना।
0: चलो जी आपने अपनी बात कह दी, जज़ाकअल्लाह खैर आपके ख्यालात।
1: मैंने तो अपने दिल की बात की, अगर आपको या सुनने वाले को खुशी है ना अच्छी लगी हो उसका अपना फेल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से तो हक अदा किया।
0: जी जी।
1: तो मैं अगर किसी को अच्छी नहीं लगी तो मैं पेश की मात्र चाहता हूँ, यही कर सकता हूँ।
0: नहीं नहीं, आपने बात तो सही कही कि हमें अपने मुल्क के लिए यानी अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, और वहाँ के जो सख्त हालात हैं उसको, उन हालात से किस तरह निकलें उसके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए, और जो लोग इन हालात के अंदर इन लोगों को डालते हैं उनको किसी तरीके से सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात ठीक, लेकिन सिर्फ मेरी वो एक अर्ज़ थी, और सिर्फ आपके लिए नहीं बाकी जितने भी हैं, कि अक्सर तौर पर हम कहते हैं ना कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो यानी क्या करना चाहिए ये समझ नहीं आई। तो अगर जितने भी हमारे सामीन हैं, अगर आपके जहन के अंदर भी कोई बात आई कि यहाँ क्या कर सकते हैं ताकि हम जो आवाम हैं उनकी मदद कर सकें, या मुल्क को बेहतर बना सकें, या जो हालात को ख़राब कर रहे हैं उनको समझा सकें, या उनके ऊपर सख्ती आ सके, क्या कर सकते हैं, अगर कोई जहन के अंदर बात आई तो ये मोस्ट वेलकम इंशाल्लाह। थैंक यू अली अलाइन साहब, गुड टू हेयर फ्रॉम यू, बड़ी खुशी। और ये मोस्ट वेलकम, जब भी मर्जी हो आप आ सकते हैं, हर जुमा की शाम को हम इधर होते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़। ये थे अली अलाइन साहब, इन्होंने नाम बतलाया, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, अच्छी बातें कही और अपने ख्यालात का इजहार किया। यू आर मोस्ट वेलकम एज वेल, कि आप आ सकते हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, और अगर कोई अच्छी राय हो, अच्छी बात हो आपके दिल के अंदर, या लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ये मोस्ट वेलकम। ऐसे करते हैं, ब्रेक ज़रा ओवर ड्यू हो गई है, ब्रेक की तरफ जाते हैं, विल गो टूवर्ड्स ब्रेक इंशाल्लाह, और ब्रेक के बाद वापस आकर अगर आप कॉल करना चाहते हैं, अली अलाइन साहब ने जो बातें कही उसके तायीद करना चाहते हैं, या उसके ऊपर कोई और बात ऐड करना चाहते हैं, या इसके अलावा जो मौजू मेरा चल रहा था उसके ऊपर, या अपना कोई मसला हो, तो ये मोस्ट वेलकम। हमारी स्टूडियो का नंबर 01274-306-66, 01274-306-66। मैं हूँ आपका मेहज़बान मौलाना फजलदाद, और ये है सनराइज़ रेडियो।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: नफसेन जायकातुल मौत
0: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230300 दास ब्रेडफोर्ड 7230300
2: तेरी गलियां
3: कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
4: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
3: चाचा केड़ा चाचा?
4: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकने तीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
4: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
5: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative. Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
6: Looking for a quality home to rent?
5: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
6: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord. Lord, you can trust.
7: The greatest station, radio station in the world, Sunrise Radio.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. بریک کے بعد آپ کا مہزبان مولانا فضل داد اور یہ ہے سن رائز ریڈیو 103.2 ایف ایم 100.6 ایف ایم اکراس دا ویسٹ یارکشائر اور پوری دنیا میں آپ اس کو سن سکتے ہیں www.sunrise.radio اور یہ ہمارے ہر جمعہ کی شام کو 8 بجے سے 9 بجے تک لائیو پروگرام ہوا کرتا ہے اس میں آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں ہماری اسٹوڈیو کا نمبر 01274 306666 I'm your host مولانا فضل داد and this is Sunrise Radio 103.2 FM 100.6 FM across the whole of West Yorkshire and you're welcome to listen to it on the air on the internet throughout the whole world on www.sunrise.radio and you're most welcome to take part in this session inshallah break se pehle ek sahil ek saathi aaye Ali Arayan sahib aur unhone اپنے خیالات کا اظہار کیا اور جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کا دل فی الحال دکھ رہا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ملک بڑی ہی قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل ہوا اور پھر اس کو اس درجے تک لاتے ہوئے بہت ساری لیڈروں نے اپنی زندگیاں کھپا دی ہیں عوام نے اس کے اندر بڑا کردار ادا کیا ہے اور وہ پاکستانی جو ادھر پاکستان میں موجود ہیں وہ بھی اور جو پاکستان کے باہر دیگر ممالک کے اندر ہیں ہر ایک کے دل کے اندر اس ملک کی محبت ہے اور چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو جائے اور الٹا اس کا ہو رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ملک کے اوپر قرضہ در قرضہ در قرضہ چل رہا ہے بلکہ اس دن ایک ساتھی مجھے کہہ رہے تھے کہ جتنا قرضہ ہے اس کے اوپر جو سود تو وہ سود بھی ملک مشکل سے ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے कर्जे ले रहा है सूद देने के लिए, कर्जा तो दूर की बात है, पता नहीं ये सच है या नहीं है, आप कंफर्म कर सकते हैं खबरों के जरिए, यू कैन कंफर्म दिस, आई डोंट नो इफ, बट दैट्स व्हाट पीपल वर सेइंग एलिजिडली दैट द इंटरेस्ट दैट एक्यूमुलेट्स ऑन द डेट इज सो मच दैट they need to take more debt to pay the interest, never mind the capital or never mind the debt. aur uski wajah se fir zahiri baat hai mulk ke upar tax lagaya jata hai aur taaki wo paise jo hain wo hukumat ko aaye aur uske zariye wo hukumat apne karze ya apna sood ada kare aur jo hukumat ke employees hain unko tankhayein de, to army ho पुलिस हो, जो हेल्थ सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उनके लिए, तो अब ये पैसे किधर से आएंगे? ये आवाम से टैक्स, लोगों से, मुल्क से, पाकिस्तानियों से टैक्स लेना पड़ता है, और वो टैक्स लगाते हैं चाहे खाने पीने के ऊपर या क्योंकि दुकानों के ऊपर लगाते हैं, इसी तरीके से पेट्रोल के ऊपर लगाते हैं, डीजल मतलब तेल, जिस किस्म का भी तेल हो, बिजली के ऊपर, गैस के ऊपर, ये तमाम लगा कर ताकि उससे कुछ न कुछ निचोड़ कर मुल्क को चलाते रहें, लेकिन उसका नतीजा ये है कि वो बोझ पड़ता है जो गरीब आवाम है, जो मालदार लोग हैं उनको तो इतना महसूस नहीं होता, क्योंकि कुछ गरीब हैं बहुत गरीब और कुछ मालदार हैं बहुत मालदार, तो जो बहुत मालदार हैं उनको तो इसका पता ही नहीं चलता होगा, लेकिन जो गरीब आवाम हैं उनके ऊपर इतना बोझ है कि कुछ अरसा पहले हमने सुना कि एक घराने के अंदर एक शख्स ने अपनी जान दे दी, खुदकुशी कर ली, पता चला क्यों, वो तंग आ गया कि अब मैं अपने बच्चों को, बीवी को खाना खिला नहीं सकता हूँ, कब तक मैं अपना हाथ फैलाता रहूँगा, मैं अपनी जान से फारिग हो जाऊँ। हालांकि ये तो गलत है इस्लामी नुक्ते नज़र से भी, हालात के लिहाज से भी, दुनियावी लिहाज से, लेकिन लोग इस तरह करते हैं, कितने ऐसे हैं। तो जैसे भाई ने अपने दर्द दिल को सामने जाहिर किया, तो इस तरह दीगर ममालिक के अंदर भी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मुसलमान होने के नाते से हम चाहते हैं कि हर शख्स की जिंदगी आसान हो, किसी के ऊपर कोई तकलीफ ना आए, और अगर कोई तकलीफ हो, परेशानी हो, तो उसकी, उस शख्स की तकलीफ और परेशानी के अंदर हम किसी न किसी अंदाज के अंदर मदद करने की कोशिश करें, ताकि अव्वल तो ये कि उसकी तकलीफ या परेशानी ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर ऐसी तकलीफ या ऐसी परेशानी है जो फौरन ख़त्म नहीं हो सकती, तो कम से कम वो परेशानी, वो सख्ती, वो सख्त हालात उनके ऊपर हल्के हो जाएं। बाज़ ऐसे परेशानियां होती हैं फौरन ख़त्म नहीं हो सकती। अब देखो जैसे मैंने मिसाल, ये दो मिनट पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्जा है कि उसके ऊपर जो सूद है उसको भी अदा नहीं कर सकते, उसके लिए भी वो कर्जे ले रहे हैं, तो मतलब कर्जे और बढ़ रहे हैं, सूद भी और बढ़ता होगा। और एक वक्त आता है कि कर्जे देने वालों ने जितना कर्जा देना था उन्होंने कहा कि अब हमने जितना दे दिया आगे हम नहीं दे सकते, बल्कि कर्जा जब देते हैं तो आम तौर पर शर्तों के साथ मशरूत होता है। व्हेन यू आर गिवन डेट ऑन अ कंट्री लेवल देन देयर आर मेनी कंडीशंस यूजुअली अटैच्ड विद दैट डेट दैट यू हैव बीन गिवन, वेदर इज फ्रॉम द इंटरनेशनल बैंक और वेदर इज फ्रॉम एन इंडिविजुअल कंट्री। ऐसे करते हैं, कुछ कॉल्स आई हुई हैं, इनके कॉल्स भी ले लेते हैं और फिर आगे बात मुख्तसर फिर चलाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, आप ऑन एयर हैं। राजा तारिक साहब, हेलो, स्क्रीन के ऊपर नाम आए हैं राजा तारिक साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, चलो ठीक है, दोबारा आप कॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, मैंने तो फुल अपना वॉल्यूम किया हुआ था इधर से, लेकिन एनीवे इन द मीन टाइम बात मैंने आज शुरू इधर से ही की थी कि इंसान के ऊपर परेशानियां आती हैं, लेकिन परेशानी के वक्त हमें डटे रहना चाहिए। वो कहावत जो है कि अपने हथियार को डाल दो, इस तरह की बात नहीं है। मायूस नहीं होना चाहिए, मायूसी एक मुसलमान की आदत हो ही नहीं सकती, उसकी खसलत हो ही नहीं सकती। यू आर नेवर टू गिव अप होप रिगार्डलेस ऑफ व्हाट सिचुएशन यू आर इन। डिफिकल्टीज, वरीज, हार्ड टाइम्स डू कम अलोंग, बट अ मुस्लिम इज टू फेस देम एंड यू आर ऑर्डर्ड टू बी डूइंग टू थिंग्स। One is rush towards salah, and when we say rush towards salah, when Allah is telling us that you rush towards salah, what it actually means is because salah is one of the closest way a Muslim, a person, can be in connection with his creator, her creator. Allah ke saath sabse nazdeek insaan us waqt hota hai jab wo namaz mein hota hai, और उस वक्त यूँ समझो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सामने है, आप उससे बातचीत कर रहे हैं। यू स्पीक इन टू हिम, यू टॉक इन टू हिम। तो खुलासा कलाम यह है कि जब आप के ऊपर परेशानी आए तो अल्लाह की तरफ फौरन मुतवज्जे हो जाए और फौरन अपने दिल की पढ़ास जो है वो अल्लाह के साथ शेयर कर ले। वट एवर योर हार्ट्स feel, speak to Allah, share to Allah. He knows exactly what you're going through, but He would like it that you speak to Him, you talk to Him about it. Namaz ki taraf, aur namaz ke zariye insaan ko tasalli hoti hai. Allah Rabbul Izzat pareshani agar us waqt khatam na bhi kar de to kam az kam itni baat zarur hoti hai ki pareshani zarur halka ho jati hai. It becomes less of a burden than it was previously with salah. Allah has given this special tranquility, basharte ke insaan namaz jo hai wo namaz ke andaaz mein padhe. Ye nahi ki fatofat jaye aur jaldi jaldi wuzu karke aur jaldi jaldi apni namaz ko ada karke do rakaatein char rakaatein jo kuch bhi padhna ho usko khatam kar de. Nahi, you are to go there and pray your salah with the slowest and with peace, without any rush. You are in the court of Allah. Ab Allah ke huzoor ke andar hain, aur is andaaz ke andar ki jaise insaan kisi muhtaram shakhsiyat ke paas jata hai aur bade hi pyar aur aaram aur izzat ehtiram ke saath jitni bhi harakat hoti hain, all your movements are to be with love and with respect and with care and with caution. That's how you are to pray salah. Aao aaram se apni do rakaatein padho aur fir apni jo dil ki baatein hain wo Allah ke saath share kar do. Dekho Allah rabbul izzat aapke liye raaste kholta hai ya nahi. Allah will open the ways. I was given a few examples earlier on. There are hundreds of examples of where people have become so anxious in life, have become so burden filled. Unke upar itna bojh aa chuka hai aur bojh se unka dil jo hai wo ubhar aa gaya hai. Lekin maine shuru ke baad idhar se ki thi ki insaan ke upar jab pareshani aaye तो सबसे पहला काम यह है कि सोचो या अल्लाह इसके ऊपर शुक्र है इससे सख्त नहीं हुई, या अल्लाह आई एम ग्रेटफुल दैट यू हैवंट मेड इट वर्स देन दिस, इट्स अप टू दिस, रिगार्डलेस ऑफ हाउ बैड इट इज, यू कीप सेइंग टू योरसेल्फ, अपने आप को तसल्ली दो और अल्लाह को शुक्र करो कि इट्स नॉट वर्स देन दिस। ऐसा करते हैं, कॉल की तरफ जाते हैं जी और इनकी कॉल ले लेते हैं और फिर आगे बात चलाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब
8: जी,
2: आपका प्रोग्राम मैं सुनता हूँ एवरी वीक विदाउट फेयर व्हेन यू आर ऑन। अच्छा, एक बात करना चाहता हूँ।
8: जरूर,
2: ये सिर्फ पाकिस्तान में ये नहीं है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है, इधर भी हो रहा है जहाँ हम रहते हैं, इधर भी हो रहा है, सिर्फ ये कि हमारी नजरों में नहीं है
8: जी।
2: राइट, और पाकिस्तानियों को जागना चाहिए, फौज भी गर्क है, उसको भी गर्क करो, पुलिस को भी, और इनके ये जो लीडर्स हैं, ये पूरी हकूमत बदलाओ, सब के सब शैतान है, ये तो मैं तो यही कहूंगा, सब के सब शैतान है। दुनिया में अच्छे लोग बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा हैं, शैतान थोड़े हैं, इनको खत्म करो। पूरी दुनिया में रोला पड़ा हुआ है, हर फौज इनोसेंट बंदे को मारती है, अपना बॉर्डर प्रोटेक्ट नहीं करती, वो सिविलियन को प्रोटेक्ट करने वास्ते फौज बनाई गई है। सबसे पहले पुलिस इज देयर फॉर लॉ एंड ऑर्डर, ज्यूडिशियल सिस्टम इज फक्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड।
8: Can I just stop you for a minute?
2: I'm sorry.
8: No, you'll have to stay within markers of respect.
2: That's fine. But I don't respect the governments that are about, without swearing at them, without swearing at the armies and without swearing at the police. Look back 30, 40 years ago. Don't go back too far. We were born in the 60s and the 70s and the 80s. It was a beautiful world up to the 2000s.
8: Gee.
2: The whole world is...
8: Mike, can I just ask you, what's your name? Or are you, if you want to say your name, you don't have to if you don't want to.
2: My name is Dunya Khan.
8: Acha, Dunya Khan, I'm just looking at the screen and there's 2 minutes left. It would have been so nice if you came at the beginning of the program, and it's nice...
2: I'm very sorry I've come so late, but I am...
8: But let me tell you, you can come next week, inshallah.
2: Inshallah, I will do. And I hope all brothers and sisters and people, elders and youngsters and everybody...
8: will listen to you, inshallah.
2: You need to wake up.
8: I have to go
2: Allah
8: because... Okay, JazakAllah
2: Khair. Thank you.
8: JazakAllah Khair. ये थे भाई, और वो कह रहे थे कि उनका नाम है दुनिया खान। थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन, एंड आई अपोलोजाइज वी डिडंट हैव इनफ टाइम टू लिसन टू यू फुली, क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, लेकिन आई हैव इनवाइटेड यू, यू मोस्ट वेलकम टू कम ऑन लाइन इंशाल्लाह, कम ऑन एयर सॉरी, नेक्स्ट वीक एवरी फ्राइडे फ्रॉम 8 o'clock टिल 9 o'clock हमारा प्रोग्राम होता है, तो इट बी नाइस टू हियर फ्रॉम yourselves about your opinions, but like I mentioned, you have to keep within the parameters of respect. Gali wagara yahan please, aur baki jo hai, just be careful, those are your personal opinions, we don't endorse any opinions of any person. Isi ke sath hamara aaj ka program khatam hota hai, jaldi jaldi baat kar raha hu, aur har juma ki sham ko 8 baje se 9 baje tak live hua karta hai. Main hu aapka mehzban Maulana Fazal Dad, और ये है सनराइज रेडियो 103.2 FM, 100.6 FM. आप भी इस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, हमारी स्टूडियो का नंबर हम हमेशा उसको अर्ज़ किया करते हैं. इसी के साथ आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं. वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु.
9: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
10: From the Sky News Centre at 9. Northern Ireland Secretary Sir Chris Bryant has announced he's banning the Drumcree parade after a 2-week standoff in Portadown. He's overturned the decision by the parade's commission to allow the Loyalist Orange Order to go down the mainly nationalist Gavaki Road for the first time in 28 years. Sir Chris says he's decided it's not in the public interest.

0: cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
1: गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
2: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
1: चाचा केड़ा चाचा?
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला सिर्फ दो पौंड ना कानस लाने ना एक पौंड छापा ते बंगा नी कोई मजदूरी नी ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन टेलीफोन 01274488935।

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 723030, दास ब्रेडफोर्ड 723030।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744462 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

0: अफसेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दस ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative. Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: बिन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

0: लिया इधर आ।
1: हाँ जी भाई दसो।
0: आ ले पैसे लिया ठेक के तो बोतल।
1: ले भाई तू बोतल दी गल करदा 200 रुपया रख ते बोतल चेक नाले मेरे तो ना दी।
2: हाँ भाई भाई मैंने भी शर्ती मार दी। हाँ
0: आजाम लिया सुनावा तेनू कहानी।
1: भाई सुना कहानी।